0: क्या हुआ? अरे बोल बोल, अरे क्या हुआ बोल बोल, अरे हुआ क्या बोलना, अरे अरे अरे बोल, अरे बोलना,
1: अरे कुछ नहीं,
0: बोल बोल,
1: अरे कुछ नहीं हुआ भाई,
0: बोलना भाई,
1: मुझे शर्म आती है।
0: क्या शर्म आता, बोलना,
1: बोल दो,
0: बोल बोल,
1: बोल दो,
0: बोल
1: बोल दो,
0: बोल बोल,

0: हाय हाय,
1: एक बात बताऊं दोस्त?
2: बता बता, जल्दी बता।
1: एक बार वो मुझे मिलने आई।
2: अच्छा?
1: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
2: फिर क्या हुआ?
1: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।

0: अरे भाई एक दिन उसका टेलीफोन आया। हाँ। कहने लगी हेलो
1: हेलो डार्लिंग
0: डार्लिंग।
1: हाँ
0: फिर क्या बोली?
1: बोली मेरे घर में पार्टी है आओ।
0: जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा वहाँ उसकी सिवा कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
0: मैं था,
1: वो थी,
0: मतलब मैं था,
1: तन्हाई थी।